दोस्तों, यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म 100 डेज के इस गीत को आवाज दी है SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं

0: जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, safe and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। तो आज की शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी बात के साथ। वो है कि खुश रहने के लिए हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। नज़रिया पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। वो जज्बा होना चाहिए कि हमारा नज़रिया जो है हम उसे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रखें, राइट? तो चाहे आप नो अभी एक काम कर रहे हो या थोड़ा सा ब्रेक एंजॉय कर रहे हो फ्रॉम योर वर्क, मैं हूँ आपके साथ अगले कुछ घंटों के लिए। तो लेकर आई हूँ सम रियली गुड म्यूज़िक टू लिसन टू एंड ऑल्सो सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आपको सुनने में और हमें बताने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ रवली।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। नमस्ते, हेलो, आदाब। पर तो आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने चाहती हूँ जो शायद हम सबके लाइफ में रोज़ होती है लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। वेल, लेट मी आस्क यू समथिंग, आपने लास्ट टाइम सनसेट या सनराइज कब देखा था? और नहीं, मैं फ़ोन कैमरा के थ्रू सनसेट देखने की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि कब आपने सच में रुक कर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आसमां को धीरे धीरे रंग बदलते हुए देखा है? कभी अपने ऑरेंज स्काई को पर्पल बनते देखा था? कभी आपने शाम को आते हुए महसूस किया था कि ये कैसी रंग बदल जाते हैं सनसेट के टाइम आते आते? तो थिंक अबाउट इट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग नई ट्रेंड के बारे में जो उभर के आई है आजकल। तो उसके बारे में बात करते हैं। और क्या ये सनसेट से कैसा जुड़ा हुआ है? वेल, ये गाना आपको बता देगा उसके बारे में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, स्टे कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो इस गाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो आखिरी बार कब था कि आपने सनसेट देखा था, ना बिना कोई फ़ोन के इंटरफेरेंस के, बस सिर्फ नेचर के साथ कनेक्ट होना। हम सब जो है ट्रैवल करते हैं, है ना, कोई माउंटेन्स जाना पसंद करता है तो किसी को बीचेस, या किसी को हिस्टोरिकल साइट्स, और कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है कभी आपने कि आजकल ट्रैवल थोड़ा कंपटीशन जैसा हो गया है? मतलब सुबह 5 बजे उठकर सनराइज़ देखना है, ब्रेकफास्ट के बाद मॉन्यूमेंट्स कवर करना है, या लंच से पहले और 2-3 प्लेसेस जो हम अपने आइटनरी में लिख रखे हैं उसे कवर कर लिया, और फिर उस जगह की लोकल मार्केट हो गई, या फिर फोटोज़ खींच लिया टू शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली या सोशल मीडिया पर डालने के लिए, और फिर रात को होटल पहुँचने तक हम थक कर जो है गिर जाते हैं, और अगले दिन फिर वही रेस कि हमारा जो ये आइटनरी है या जो भी हमने चाहा वो हमें देखना है, क्योंकि वेकेशन कंप्लीट करने जाते हैं हम। ऐसा लगता है कि वेकेशन एंजॉय कम और एक चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है, मतलब नो डन, ये कवर हो गया, इस प्लेस ने हमने देख लिया और इसके बारे में हमने पोस्ट कर लिया, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि इसी बीच एक नया ट्रेंड क्वाइटली पॉपुलर हो रहा है और उसका नाम है डस्किंग। अब नाम सुनने में सिंपल लग रहा होगा, बट लेकिन इसका आइडिया जो है काफ़ी पावरफुल है। डस्किंग बेसिकली मतलब होता है शाम के वक्त इंटेंशनली रुकना, बाहर बैठना और दिन को रात में बदलते हुए देखना, बस इतना ही। कितना सिंपल सी चीज़ है, राइट? कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रश नहीं, और ना ही कोई डेस्टिनेशन। बस हमें ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है, जस्ट द स्टिलनेस। और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये जस्ट जो है सबसे डिफिकल्ट वर्ड जो है वो बन गया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे डस्किंग के बारे में, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9। और फिर इसके साथ साथ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी हैं और स्टोरीज भी हैं जो हम आपके लिए लाए हैं, तो और कहीं मजा आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए। नमस्ते, हेलो, आदाब।

सन। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजी रवली। और हम बात कर रहे हैं इस आवर डस्किंग के बारे में और क्यों इसे आपके अपने नेक्स्ट ट्रिप में आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम जो है हमेशा बिजी रहते हैं और वेकेशंस में भी एक भाग दौड़ सा लगा रहता है कि हमारे जो आइटिनरीज है, जो जो जगह हमने लिख रखी है उसकी उसके पास जाएं और उन्हें देखें, नो सो एकदम जगलिंग की तरह रहता है वेकेशन भी, राइट। तो अगर हम जो है काम नहीं कर रहे हो तो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, अगर स्क्रोलिंग नहीं कर रहे होते हो तो प्लान करेंगे कर रहे होते हैं, इफ़ नॉट प्लानिंग देन वी आर वरिंग अबाउट समथिंग। इट मीन्स कि हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली कभी भी स्टिल नहीं होता, राइट। और इसी वजह से जो है डस्किंग काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने लगा है लोगों के लिए, क्योंकि ये आपसे कुछ नहीं पूछता, इट डजंट आस्क यू एनीथिंग, आपसे कुछ अचीव करने को नहीं कहता है, ना आपसे पूछता है कि कोई प्रोडक्टिव काम आपने आज किया है नहीं, बस आपसे परफेक्ट सनसेट फॉलो लेने को ही नहीं कहता है, बस कहता है कि जस्ट सिट डाउन, लुक अप एंड नोटिस, जस्ट दैट। और इंटरेस्टिंगली डस्किंग जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं नेदरलैंड्स में मिलती है, तो वहाँ जो है फार्मिंग कम्युनिटीज में लोग दिन भर काम ख़त्म करने के बाद शाम के वक्त कुछ देर क्वाइटली शांति बैठते थे और फिर डिनर से पहले बिना कोई कन्वर्सेशंस के सिर्फ ट्वाइलाइट को ऑब्जर्व करते हुए इमेजिन करते थे। मतलब सोचने के लिए देखिए, आज के टाइम पर जब हम खाना खाते हुए भी फ़ोन देखते हैं, एक ज़माना था जब लोग सनसेट देखने के लिए टाइम निकालते थे, बट नॉट फॉर द कंटेंट, नॉट फॉर द फॉलोअर्स, नॉट फॉर द लाइक्स, जस्ट फॉर देमसेल्फ्स, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, वो स्टिलनेस को, जिस नेचर को देखने, अपने आप में ढलते हुए देखने के लिए, और कैसे शाम रात में बदल जाती है और फिर दिन भर का थकावट जो भी है, तो वो थोड़ा समय जो है क्वाइटली निकाल के जस्ट गेजिंग एट द सन व्हाइल इट्स सेटिंग, तो ये अपने आप में ही एक थेरेपी की तरह हो चुका है। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल आर रियली नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रेंड दैट हैज़ बीन कम अप रिसेंटली, एंड एंड पीपल मेकिंग द पीपल टू गेट अ लिटल बिट स्लो फॉर सम टाइम एंड एन्जॉय दैट स्टिलनेस व्हाइल इट लास्ट्स। यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9। कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज सीजंस इन द सन बाय वेस्ट लाइफ। एन्जॉय दिस ट्रैक।

0: 101.9.
1: वेलकम बैम स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 10:34:45 और हम बात कर रहे हैं डस्किंग के बारे में और क्यों इसे शायद आप अपने नेक्स्ट ट्रिप में ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे इस गाने से पहले हमने ये जाना कि ये जो डस्किंग का कॉन्सेप्ट है ये कुछ नया नहीं है बल्कि इसकी रूट्स जो है हमें नेदरलैंड्स में मिलते हैं कि कैसे वो दिन भर के बाद वहाँ के फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो है कुछ देर क्वाइटली बैठ के जस्ट टाइम निकाल के जो है सिर्फ ट्वाइलाइट को ऑब्जर्व करते हुए अपने टाइम जो है बिताते थे। और शायद जो है इसी वजह से डस्किंग लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है बिकॉज डीप डाउन हम सब थोड़ा स्लो होना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ जो है बहुत ही फास्ट पेस्ड मोड पे चल रही है। यू नो मंडे आता है और पता ही नहीं चलता कि फ्राइडे कब आ जाता है और वैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है और देखते देखते दिसंबर आ जाता है। मतलब हम इतनी जल्दी में जी रहे हैं कि मूवमेंट्स हमारे पास से गुजर जा रहे हैं और शायद हम उन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो मुझे एक लाइन जो है काफ़ी पसंद आई थी वो था कि दैट लाइफ इज़न्ट मेजर्ड बाई हाउ मेनी प्लेसेस यू विजिट बट हाउ डीपली यू एक्सपीरियंस देम। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है डस्किंग का ट्रेंड जो उभर के आया है एग्जैक्टली हमें वही सिखाता है, एक्सपीरियंस इट डीपली, नोटिस डीपली एंड ऑल्सो फील डीपली।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। तो हम बात कर रहे हैं डस्किंग के बारे में, राइट? और दोस्तों, डस्किंग जो है सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए ही नहीं है, ये हम सभी के लिए है। आपको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर घर की बालकनी हो या छत हो या कॉलोनी का पार्क या फिर सिंपल सा एक विंडो, बस इतना ही काफ़ी है। आज शाम अगर आप घर पहुँचते ही टीवी ऑन करने के बजाय जस्ट 10 मिनट्स के लिए स्काई देख लें, तो वही डस्किंग हो जाती है, क्योंकि आज के हाइपर कनेक्ट

कनेक्टेड वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली जो है कनेक्टेड हैं ही, राइट, फोन से, ईमेल से, या थ्रू मैसेजेस, सोशल मीडिया से. बट एक फनी थिंग ये है कि हम दुनिया से कनेक्ट होते जा रहे हैं और खुद से डिसकनेक्ट. डस्किंग जो है हमें वापस खुद से मिलाता है. इट गिव्स यू अ मोमेंट ऑफ दैट स्टॉ सॉलिट्यूड. और सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क होता है. लोनलीनेस का मतलब होता है अकेले रहना, और सॉलिट्यूड मीन्स एन्जॉइंग योर ओन कंपनी. और डस्किंग सॉलिट्यूड को सेलिब्रेट करता है. और कभी आपने ये इटालियन एक फ्रेज सुना है जिसे कहते हैं डॉल्शे फार नियंते. इसका मीनिंग होता है द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ ना करना ऑलमोस्ट गिल्टी फील कराता है हमें, है ना. अगर हम रिलैक्स कर रहे हो तो लगता है कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, अगर हम बैठ गए तो लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है. लेकिन इटालियंस कहते हैं डूइंग नथिंग कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल. और डस्किंग भी वही कहता है. और साथ ही में हमें क्या नेक्स्ट थिंग क्या है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. समथिंग व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू इज़ जस्ट इनफ.

101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रावली। तो दोस्तों, हमने आज डस्किंग के बारे में जाना और कैसे डस्किंग जो है हमसे ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए पूछता, जस्ट इट्स आस्क यू नो टू कीप योर फोन असाइड, कीप योर थॉट्स असाइड एंड जस्ट सन को सेट होते हुए देखिए और उस स्टिलनेस को इन्जॉय कीजिए। और तो आज का अगर आपका चैलेंज कुछ होगा तो यही होगा कि बहुत ही सिंपल है कि आज शाम सिर्फ 10 या 15 मिनट जो है नो फोन, नो स्क्रोलिंग, नो नोटिफिकेशन और नो मल्टीटास्किंग एट ऑल। बस आसमां देखिए, सनसेट देखिए, ये शाम को धीरे धीरे रात में बदलते हुए देखिए और नोटिस करिए बर्ड्स की आवाज़, हवा की ठंडक को, स्ट्रीट लाइट्स का जलना, लोगों का घर लौटना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ करती हैं और रोज़ होती है लेकिन जिन्हें हम देखना जो है भूल जाते हैं। तो बिफोर आई लीव यू विद द नेक्स्ट सॉन्ग, रिमेंबर दैट ट्रैवल इजंट अबाउट गोइंग समवेयर फार अवे। समटाइम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी हैपन्स व्हेन यू स्टॉप रनिंग एंड सिंपली pay attention. So in a world where we are obsessed with doing more, dusking reminds us of the beauty of doing nothing and the beauty of pausing, the beauty of noticing and the beauty of letting the day quietly come to an end.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। अब से कुछ ही देर में 11 बजे आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइन एंड इसके बाद वापस हम हाजिर हो जाएंगे नमस्ते हेलो आदाब के साथ। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 पर. मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली. और नमस्ते, हेलो, आदाब. तो वेल दोस्तों, आज जो है आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं. वेल, जो आपके दिमाग के बहुत ही मतलब नज़दीक भी है और क्यूट और मिस्टीरियस हैबिट का राज भी आज मैं खोलने वाली हूँ. क्योंकि अब ज़रा ऑनेस्टली अगर हम आंसर करें, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप यू नो घर पे ऐसे ही बैठे हुए हो या कुछ कर रहे हो, बट आप अचानक से आप हम करने लग जाते हो, आप कोई गाना गुनगुना रहे हो या ऑफिस में काम करते हुए या यू नो ड्राइव करते हुए स्लोली. और सबसे फनी बात यह है कि कभी कभी तो हम खुद को नहीं पता होता है कि हम कौन सा गाना जो है हम कर रहे हैं और ये क्यों हम जो है गाना गा रहे हैं. तो ये आज का हमारा सवाल है, दैट व्हाई डू वी हम सॉन्ग्स सबकॉन्शियसली. तो क्यों हम गाने नो हम करते हैं बिना हमें उतना हमारा नो माइंड लगाए, बिना हम कोई गाना हम क्यों कर लेते हैं. तो उसके बारे में ये मिस्टीरियस जो हैबिट है, उसकी राज या उसके पीछे वाली रीजंस क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे. बट आफ्टर दिस ट्रैक, सो स्टे ट्यून्ड.

वेल, इस छोटे से अंतराल से पहले मैंने आपसे पूछा था कि व्हाई डू वी हम सॉन्ग्स सबकॉन्शियसली, और कुछ गाने हैं हमारे दिमाग में मानो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे फेविकॉल, और हमें पता भी नहीं कर चलता कि इसके पीछे का रीज़न एक्चुअली क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में आज। नमस्ते, हेलो, आदाब। में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ RJ रवली। तो दोस्तों, अब मुझे पता है कि आप में से आधे लोग ये गाना अगले 10 मिनट तक नहीं भूलने वाले, क्योंकि इसकी गाने की जो मेलोडी है बहुत ही खूबसूरत है, और गाना और लिरिक्स भी बहुत ही बेहतरीन है। जो गाना अभी हमने सुना है, सुन रे सखी फ्रॉम द मूवी हमसे है मुकाबला, तो इस फिनोमिनन को कहते हैं साइंस में एज ईयर वॉर्म। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, बट लेकिन इसका इनसेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ईयर वॉर्म का मतलब है एक ऐसा ट्यून या सॉन्ग जो बार बार बिना परमिशन के हमारे दिमाग में प्ले होता रहता है, जैसे ब्रेन का पर्सनल हमारा प्लेलिस्ट हो। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन्स पैटर्न्स को बहुत पसंद करते हैं, पर्टिकुलरली म्यूजिकल पैटर्न्स को, जैसे कि रिदम हो जाए, मेलोडी या रिपीटिंग लिरिक्स, और ये सब ब्रेन को ईजिली याद रह जाते हैं। और जब कोई ट्यून इनकम्प्लीट रह जाता है ना, ब्रेन उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता रहता है। मतलब आपने गाना सुना, गाना बंद हो गया, लेकिन ब्रेन ने कहा नहीं नहीं शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और फिर वही ट्यून रिपीट पोर्ट पर जो है चलने लगता है, और फिर हम सब आंसर सबकॉन्शियसली ही उस गाने को हम करते हैं इसी धुन में कि ये गाना कंप्लीट हो जाए। है ना, इंटरेस्टिंग सी थिंग। साइंस में इसे ईयर वॉर्म कहते हैं इस फिनोमिनन को, बट हमें शायद ही ऐसी फिनोमिनन के बारे में पता था, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती है ना। हमने देखा है कि हम उठते ही ये गाना आज जो है एक रैंडम सा ही गाना हमारे दिमाग में आ जाता है, एंड वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट शायद यही एक रीज़न भी हो सकता है। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, मैं हूँ आपके साथ RJ रावली।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:21। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाई डू वी हम सबकॉन्शियसली, इसके पीछे का राज क्या है। जैसे अभी हमने जाना कि ब्रेन्स को जो है पैटर्न्स बहुत पसंद है, पर्टिकुलरली म्यूजिक के पैटर्न्स, जैसे रिदम हो जाए या मेलोडी या रिपीटिंग लिरिक्स। तो जब हम सोचते हैं कि यू नो गाना हमने सुना और उसके बाद गाने को हमने तो बंद कर दिया, बट ब्रेन के लिए वो अभी ये किस्सा जो है ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो ट्यून रिपीट मोड पर चलने लगती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी इससे जुड़ा हुआ है कि हम ज़्यादा तब हमिंग करते हैं जब हम काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग, वॉकिंग हो जाए या रूम क्लीन करते वक्त। क्यों? बिकॉज हमिंग जो है एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर सकती है, क्योंकि जब हम गुनगुनाते हैं ना, हमारी ब्रीदिंग थोड़ी रिदमिक हो जाती है और बॉडी को एक सूदिंग सिग्नल मिलती है। मतलब बिना रियलाइज किए आप खुद को रिलैक्स कर रहे होते हो। एक तरह का ये एक मिनी बस्टर या स्ट्रेस बस्टर हो सकता है, विच इज़ अमेजिंग, इजंट इट?

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम सबकॉन्शियसली जो है कोई गाना ऐसे ही हम करते हुए रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये एक तरीके का मिनी स्ट्रेस बस्टर हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जो है एक हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर सकती है। तो अब आता है एक और क्वेश्चन, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप हैप्पी होते हो तो अलग गाने याद आते हैं, और जब हम इमोशनल होते हैं तो अलग? ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि म्यूज़िक और इमोशंस का कनेक्शन जो है वो काफ़ी डीप है। हमारा ब्रेन जो है सॉन्ग्स को सिर्फ साउंड की तरह स्टोर नहीं करता, वो उनके साथ मेमोरीज भी अटैच कर लेता है, और इसीलिए एक पुराना गाना सुनते ही हम अपने स्कूल डेज में पहुंच जाते हैं, या किसी रोड ट्रिप की याद जो है हमें आ जाती है, या किसी स्पेशल पर्सन की। एक गाना और पूरी मेमोरी एल्बम जो है वो ओपन हो जाती है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना। एंजॉय दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन FM Rainbow 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एफएम। मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। वेल, हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम सबकॉन्शियसली कोई भी गाना हम करते रहते हैं। तो इस गाने से पहले हमने ये जाना है दैट म्यूज़िक और इमोशन का कनेक्शन जो है वो काफ़ी डीप होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ साउंड को स्टोर नहीं करता बट उसके साथ मेमोरीज़ को भी अटैच करता है, और इसीलिए हम जब हमारे मूड के हिसाब से जो है हम गाना सुनना पसंद करते हैं, है ना। और एक्चुअली साइंटिस्ट कहते हैं कि म्यूज़िक मेमोरी के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिगर्स में से एक है, तो इसीलिए कभी कभी हम बिना वजह एक स्पेसिफिक सॉन्ग गुनगुना रहते हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन किसी इमोशन या मेमोरी को प्रोसेस कर रहा होता है। मतलब गाना सिर्फ गाना नहीं होता बल्कि एक इमोशनल मैसेज भी हो सकता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आती है मेरी फेवरेट थियरी। कभी नोटिस किया है एग्ज़ाम के पहले, इम्पॉर्टेंट मीटिंग के पहले, या जब आप किसी टेंशन में हो तब भी कोई रैंडम गाना दिमाग में चलने लगता है? साइंस कहता है कि ब्रेन कभी कभी स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। मतलब एक तरीके का ये एक मेंटल एस्केप, जैसे दिमाग बोल रहा हो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ यार, और फिर बैकग्राउंड में अपना अलग डीजे स्टार्ट हो ही जाता है। है ना इंटरेस्टिंग? आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड विथ मी ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9।

इस छोटे से अंतराल से पहले हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम जो है कोई गाना सबकॉन्शियसली कभी कभार हम करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, हम जो ये गाने हम करते हैं, क्या वो यूजुअली मतलब नए गाने ही होते हैं? नॉट ऑलवेज, क्योंकि कभी कभी 10 साल पुराना गाना भी अचानक याद आ जाता है, पता नहीं क्यों।

because subconscious mind doesn't care about the release dates. उसे बस emotional impact चाहिए. जो tune किसी emotion से connected है, उसकी comeback entry कभी भी हो सकती है, बिल्कुल Bollywood hero की तरह. और अब एक mind blowing fact, research suggest करते हैं कि म्यूजिशियंस ही नहीं, नॉर्मल लोग भी अपने दिमाग में इंटरनली म्यूजिक हियर कर सकते हैं. मतलब एक्चुअली स्पीकर नहीं बज रहा है, मतलब फिर भी ब्रेन पूरा गाना प्ले कर रहा होता है, चाहे वो लिरिक्स हो, उस गाने की बीट हो, सिंगर की वॉइस, सब कुछ हमारा ब्रेन कैप्चर कर चुका होता है और वो पूरा गाना प्ले करता ही रहता है. मतलब हम सबके अंदर एक इनविजिबल म्यूजिक प्लेयर मानो इंस्टॉल्ड है और इसकी सब्सक्रिप्शन वो बिल्कुल फ्री. तो अगली बार जब बिना रीज़न के कोई गाना आप गुनगुना रहे हो, ये कोई ट्यून बार बार दिमाग में चल रहा हो, तो इरिटेट मत होइए. हो सकता है आपका ब्रेन किसी मेमोरी को रिविजिट कर रहा हो, किसी इमोशन को प्रोसेस कर रहा हो, या सिर्फ आपको थोड़ा सा हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करवाना चाहता है. बिकॉज समटाइम्स योर सबकॉन्शियस माइंड स्पीक्स इन मेलोडीज, तो उस मेलोडीज को इन्जॉय कीजिए, जैसे कि हमारा अगला गाना.

वर्ल्ड स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:58। अब से कुछ ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज इन इंग्लिश। उसके बाद 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे। नमस्ते, हेलो, आदाब आपके साथ। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार एवियों फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजावेलु और वीपी शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 PM से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक, आपका एक बार फिर से स्वागत है. नमस्ते, हेलो, आदाब. पर ओनली ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली. इससे पहले कि हम इस आवर में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जाने या बात करें, आइए शुरुआत करते हैं ये एक पावरफुल एनर्जेटिक ट्रैक के साथ.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली। और नमस्ते, हेलो, आदाब। तो दोस्तों, आज हम याद करेंगे भारत की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिनकी वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका के रूप में हुआ था, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक निडर योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद रखा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तब रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने के बजाय तलवार उठाए और अपनी सेना के नेतृत्व किया। कहते हैं कि वे अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में उतर गई थी। उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें भारत की सबसे महान योद्धा महिलाओं में से शामिल कर दिया, उनकी वीरता को अमर बना दिया। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी ने, जिसे हम सब उनकी मशहूर पंक्ति से अवगत है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, के लिए हम जानते हैं। और ये कविता की पंक्तियाँ हमने अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। ये कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी को सुंदर रूप से बयां करती है, उनके बचपन से लेकर विवाह तक और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में उनकी अद्भुत नेतृत्व तक। ये कविता वीरता, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक बन चुकी है और आज भी देश भर के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ झांसी के लिए ही नहीं बल्कि भारत की आज़ादी और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हिम्मत और हौसला के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। तो उनकी पुण्यतिथि पर आइए हम सब मिलकर इस महान वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके एहसास को, उनके साहस को नमन करते हैं।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। अब मैं जो सेगमेंट के बारे में बात करने वाली, उससे पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, या मान लीजिए एक सवाल के साथ ही शुरू करना है। मतलब वो लास्ट टाइम कब था जब आपने एक ग्रीटिंग कार्ड आपको किसी ने दिया था? व्हेन डिड यू रिसीव अ ग्रीटिंग कार्ड लास्ट टाइम? ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज, नॉट अ यू नो इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट और अ मैसेज, आई मीन अ रियल ग्रीटिंग कार्ड, द काइंड यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स, द काइंड विद समवंस हैंड राइटिंग इज इनसाइड, एंड द काइंड दैट समहाउ फील्स टू स्पेशल टू थ्रो इट अवे। सो टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट, विल बी राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
1: ఇంటి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వండి భర్త గారు.
2: ఇది రేషన్ కి 15,000, కూరగాయలకి 2,000.
1: మరి కరెంటు బిల్లుకు
2: 0 రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను?
1: ఓహో మర్చిపోయా, ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించాం కదా, దాంతో 4,000 రూపాయలు మిగిలాయి కదా, దాంతో షాపింగ్ చేద్దామా?
2: సరే.
3: పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి, పిఎం సూర్యఘర్ .gov.in.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिरी टाइम कब था जब आपको फिजिकली एक ग्रीटिंग कार्ड मिला हो, जो ना ही कोई सोशली उसे आपने भेजा हो, बट लिटरली हैंड रिटन ग्रीटिंग कार्ड, क्योंकि वो इतना खास होता है कि हम और मेमोरीज उतनी इतनी जुड़ जाती है उस पर्सनल टच से, तो वो काफ़ी होता है। मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स की अगर हम बात करें तो पहले हम हर एक इवेंट के लिए ग्रीटिंग कार्ड होती थी, है ना, बर्थडे कार्ड्स हो या एनिवर्सरी कार्ड्स या टीचर्स डे पे कोई कार्ड्स हो, तो ये हम अपने मनपसंदीदा लोगों को यू नो ग्रीटिंग कार्ड देते थे, राइट। एक बर्थडे कार्ड फ्रॉम अ डियर फ्रेंड, या यू नो अ हैंडमेड कार्ड फ्रॉम योर चाइल्ड, या एक न्यू ईयर की ग्रीटिंग, या परहैप्स अनदर स्पेशल डे दैट मेक्स यू स्माइल ईयर्स लेटर जस्ट बाय लुकिंग एट दैट ग्रीटिंग कार्ड, इजंट इट। और कितना अमेजिंग है दैट हाउ अ सिंपल पीस ऑफ पेपर कैन होल्ड सो मैनी इमोशंस। ग्रीटिंग कार्ड्स हैव ऑलवेज बीन मोर देन जस्ट कार्ड्स, है ना, दे आर लाइक लिटिल टाइम कैप्सूल्स। दे कैप्चर मोमेंट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज दैट स्टे विद अस लॉन्ग आफ्टर द ओकेजन इज ओवर एज वेल। यू नो एज अ चाइल्ड वी रिमेंबर देन हाउ एक्साइटिंग वॉज इट टू विजिट अ स्टेशनरी शॉप बिफोर समवंस बर्थ

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में। और कितना मतलब एक टास्क ही होता था जब हमें ग्रीटिंग कार्ड चूज़ करना होता था किसी को देने के लिए या किसी को विश करने के लिए, राइट? दैट वाज, क्योंकि इतने सारे होते थे स्टेशनरी शॉप में। मतलब हम 20-30 मिनट सिर्फ मैसेज क्या है उस कार्ड्स के अंदर वो ही पढ़ते थे, ओनली टू विद द वेरी फर्स्ट वन वी हैव पिक्ड अप। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सीक्रेटली एक कार्ड को जज करते हैं बाय हाउ प्रिटी इट लुक्ड बिफोर इवन रीडिंग व्हाट वाज रिटन इनसाइड, इजंट इट? बट द रियल मैजिक वाजंट इन द डिज़ाइन, इट वाज रिटन इन द हैंड रिटन मैसेजेस। वो फ्यू लाइंस, वो चंद लाइंस जो स्पेसिफिकली हमारे लिए लिखे हो, कभी कभार वो फनी होते थे, कभी कभार इमोशनल और समटाइम्स अ लिटिल ऑकवर्ड, बट हमेशा पर्सनल। आज का अगर हम देखें कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया है देन एवर बिफोर, राइट? वी कैन सेंड अ मैसेज।

अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स, और हम रिएक्ट करते हैं इमोजीज के साथ, स्टिकर्स के साथ, वॉइस नोट, वीडियो नोट, क्या क्या नहीं आ गए, राइट? एंड वाइल दैट्स वंडरफुल इन इट, बट एक ग्रीटिंग कार्ड रिसीव करना अपने आप में एक यूनिकली स्पेशल है उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि एक कार्ड कहता है दैट आई टुक टाइम फॉर यू, समवन वेंट टू अ स्टोर, किसी ने बैठ के उस कार्ड को शायद बनाया हो, काफ़ी केयरफुली उन शब्दों को उन्हें उन्होंने चुना हो, लिखा हो, और उन्होंने आपके बारे में सोचा हो, क्योंकि इतना टाइम निकाल के अगर कोई इंसान आपको कार्ड दे रहा है, सो दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि इन दिस टुडेज़ बिजी वर्ल्ड टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल गिफ्ट्स वी कैन गेट, इज़न्ट इट?

0: बात चल रही है ग्रीटिंग कार्ड्स की, और रिटन उस ग्रीटिंग कार्ड्स की तो अहमियत और कुछ अलग ही होती है। और अगर आपने खुद बनाया हो, आपके थॉट्स उसमें गए हैं, सो इट्स मोर मेक्स इवन मोर स्पेशल फॉर द वन हु डिड इट एंड फॉर द वन हु इज़ गोइंग टू रिसीव इट एट द एंड, इज़न्ट इट। और पता है आपको क्या इंटरेस्टिंग है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स को कहीं ना कहीं सेफली रखा हुआ है, मे बी इन द ड्रॉअर्स, बॉक्सेस, बुक्स और कबर्ड्स। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ पीसेस नहीं है पेपर के, दे आर द रिमाइंडर्स ऑफ पीपल, ऑफ द बर्थडेज सेलिब्रेटेड, फ्रेंडशिप्स चेरिश्ड, अचीवमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड लव एक्सप्रेस्ड। और बहुत सालों बाद जब हम कोई ऐसी एक कोई ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड खोलते हैं तो ऐसा लगता है ऑलमोस्ट लाइक वी ओपनिंग या री ओपनिंग अ मेमोरी, एंड सडनली हम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एग्जैक्टली टू दैट मोमेंट। यू रिमेंबर द पर्सन हु गेव इट टू यू, क्या ओकेशन था और उस टाइम पे क्या कॉन्वर्जेशंस हो रही थी, कौन किस चीज़ में किस बारे में हंस रहा था। एंड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स हमें लगता है द टाइम स्टूड स्टिल, राइट? एंड नाउ हियर समथिंग आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट। वेल, जो चीज़ मुझे चाहिए कि आप लोग एक बार सोचिए वो है दैट कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई इम्पोर्टेंट ओकेशन या स्पेशल ओकेशंस के लिए ही वेट करते हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? जो कॉमन है, राइट, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो या फेस्टिवल्स हो जाए, बट क्या डू वी रियली नीड अ स्पेशल डे टू टेल समवन दैट दे आर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर हम अपना ही ओकेशन क्रिएट किए तो कितना अच्छा होगा, राइट? इमेजिन रिसीविंग अ सिंपल कार्ड दैट सेज जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट यू आर अप्रिशिएटेड, या जस्ट थिंकिंग ऑफ यू टुडे, और इवन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और थैंक यू फॉर गाइडिंग मी व्हेन आई वाज फंबलिंग अ बिट। नहीं, कोई ग्रैंड रीजन नहीं चाहिए, ना ही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की ज़रूरत है, जस्ट काइंडनेस। वुडन दैट मेक योर डे एनी बेटर, राइट? क्योंकि कई बार वो छोटी छोटी जेस्चर्स ही हैं जो बड़ा इम्पैक्ट हम पे, लोगों पे असर करता है। एंड मे बी दैट्स द लेसन ग्रीटिंग कार्ड्स हैव बीन टीचिंग अस ऑल अलोंग। क्योंकि ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में नहीं है और फैंसी वर्ड्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ा है, वो है मेकिंग समवन फील सीन। बिफोर आई रैप अप, ये एक चैलेंज है आपके लिए जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि इस वीक यू कैन राइट अ नोट टू समवन। इट डजेंट हैव टू बी अ ग्रैंड फैंसी ग्रीटिंग कार्ड जो आप एक छोटे से न्यूज़पेपर, एक पेपर पे लिख सकते हो या एक स्टिकी नोट बना सकते हो, हैंड रिटन रूट, राइट समथिंग जेन्यून एंड टेल दैट समवन दैट व्हाई दे मैटर टू यू, व्हाई यू अप्रिशिएट देम, क्योंकि यू माइट बी सरप्राइज बाई हाउ मच दोज वर्ड्स मीन टू देम। You're listening to FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఆ ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आरजे रफली। और हम बात कर रहे थे इस सेगमेंट में ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में कि कैसे हमें कोई स्पेशल ओकेशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है एंड हाउ वी कैन क्रिएट आर ओन ओकेशन और सिम्पल

वो मैसेज काफ़ी सिंपल हो सकता है, लाइक यू नो कितना हम उस इंसान को या उस व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हो, या फॉर द गाइडेंस जो उन्होंने हमें दिया हो एंड वी नीडेड, या कुछ भी सिंपल हो सकता है. यू नो जस्ट नोट पैड में लिख सकते हो आप, या कोई स्टिकी नोट या हैंड रिटन लेटर, कुछ भी हो सकता है. ये बस जो आपने लिखा हो वो बस जेन्यून हो, टू टेल समवन दैट वाई दे मैटर टू यू, क्यों इतना उन्हें अप्रिशिएट करते हैं. क्योंकि क्या पता जिनके लिए आप ये लिख रहे हो वो उनके लिए क्या कमाल कर सकता है जस्ट दैट वर्ड्स. क्योंकि लॉन्ग मैसेजेस जो है वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती है, नोटिफिकेशंस डिसअपियर हो जाती है, बट हार्ट फेल्ट वर्ड्स हैव अ वे ऑफ स्टेइंग विद अस, इज़न्ट इट. और यही खूबसूरत बात है ग्रीटिंग कार्ड्स का, कि ये हमें बताते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि कितना पावरफुल है उन मैसेजेस का जो स्क्रीन से नहीं आते, दे कम फ्रॉम दी हार्ट. सो अगर आप, इफ़ यू हैव एन ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड टक्ड अवे समवेयर, मे बी टेक इट आउट एंड रीड इट अगेन टू फील दैट इमोशन, और यू माइट फाइंड अ मेमोरी वेटिंग फॉर यू, राइट? एंड आई एम आरजे रवली, दिस वॉज टूडेज लिटल हार्ट टू हार्ट. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ग्रेटफुल, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फ्यू काइंड वर्ड्स. सो नाउ लेट्स कीप दिस नॉस्टैल्जिया एंड गुड वाइब्स फ्लोइंग विद सम वंडरफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन FM Rainbow 101.9.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। वेल, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:50 पर 1:05 हो चुके हैं। तो हम आ पहुँचे हैं हेलो रेनबो में। वेल, आज अभी तक हमने अपने पिछले सेगमेंट में ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में बात की और कैसे हम यू नो स्पेशल ओकेशन के बिना भी वेट किए हम खुद एक क्रिएट करके ग्रीटिंग कार्ड्स को दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा ग्रीटिंग कार्ड से ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। ये मुझे आपको आज आप मुझे बताना पड़ेगा कि द मोस्ट मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड जो आपको मिला हो। और यू नो काफ़ी सिंपल है ये सेगमेंट, बट काफ़ी मेमोरीज होती हैं, काफ़ी इमोशंस हमारी इस ग्रीटिंग कार्ड के साथ शायद आपकी अटैच्ड हो, राइट? वो छोटा सा पेपर का पीस, बट जिसमें कभी कभी इतने इमोशंस होते हैं कि हम उसे ईयर्स तक संभाल कर रखे हैं, राइट? एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव यू नो उन ग्रीटिंग कार्ड्स को अपने सेफली कहीं पे यू नो रखा हो, सो दैट टाइम एंड अगेन जब भी आपको पढ़ने का मन हो या जस्ट टू रीविजिट इन द टाइम कैप्सूल, यू कैन रीड देम अगेन एंड अगेन। तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपको सबसे मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड यू नो मिला है और या कौन सा था, किसने आपको दिया है। आप हमारे साथ शेयर करके कॉल कर सकते हैं हमें 0402323 पर या 0402323 या 0402970

0: FM Rainbow 101.9.
1: और आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो ऑन एफएम रेनबो 101.9। और आज हमारा टॉपिक था कि मोस्ट मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड जो आपको मिला है। तो हमारे साथ एक मैसेज आया है अदिति का, उन्होंने लिखा है दैट उनके लिए द मोस्ट मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड था जो उन्हें मिला था उनकी ग्रैंड मदर से जब वो 18th बर्थडे उनका था। तो उन्होंने एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा था अबाउट यू नो बिलीविंग इन हर सेल्फ और कैसे उन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा है कि ये कार्ड वो अभी भी अपने पास रखा है क्योंकि उनकी वर्ड्स जो है उन्हें कंटिन्यूसली इंस्पायर करते हुए रहते हैं। सो थैंक यू अदिति फॉर राइटिंग दिस मैसेज फॉर अस। तो आप भी अगर आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंचाना चाहते हो या कॉल करना चाहते हो तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 1040-2323-0030 पर या 0402-3234-821 पर।

इवेंट हो या कॉन्वर्सेशंस हो, कहीं ना कहीं वो टाइमलाइन ज़रूर आ ही जाती है हमारी आंखों के सामने। तो फिलहाल आ रहा है ये बहुत ही प्यारा सा गीत, एंजॉय दिस ट्रैक।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయువారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. तो बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानने की ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए वो मोस्ट मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड क्या है. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार रावणी जी.
1: नमस्कार सर, कैसे हैं?
2: मैं वॉलेट प्रभाकर बात कर रहा हूँ.
1: जी सर, तो बताइए कि आपका वो मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड क्या है.
2: मेमोरेबल बोले तो एक हम स्कूल पे पढ़े से टाइम पे लास्ट 10th क्लास में.
1: जी सर.
2: पूरा टीचर्स के साथ, HM के साथ हमारे स्टूडेंट्स पूरा फोटो उतारे एक. वो संभाल के रखा.
1: अच्छा, वो
2: और हमारा सर्विस में है, स्टेशन पे हमारा स्टाफ पूरा उतरे. वो भी संभाल के रखा. अभी उससे संभाल के रखने का चीजा बहुत हो गई.
1: जी,
2: आधार कार्ड.
1: राइट. सो तो आपने अपने वो फोटोग्राफ्स मतलब कार्ड संभाल के रखे हैं.
2: ये इसको संभालना पड़ता ना, इसको भी.
1: जी जी, बिल्कुल संभाल के रखिए, जरूरी है तो संभालना बिल्कुल है. एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग विद अस. तो आप भी अगर कॉल करना चाहोगे और बताना चाहोगे वो मोस्ट मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड क्या है जो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है. तो एक और मैसेज आया है हमारे लिए ध्रुव का. उन्होंने लिखा है दैट अ ग्रीटिंग कार्ड उनके लिए काफ़ी स्टैंड आउट करता है. वो ग्रीटिंग कार्ड उन्हें मिला था उनके बेस्ट फ्रेंड्स से, और वो भी उन्होंने शॉप से नहीं खरीदा था बल्कि घर पे ही उन्होंने बनाया था अपने हाथों से, जब वो स्पेशली एक डिफ़िकल्ट टाइम गो थ्रू कर रहे थे. तो उसमें काफ़ी पर्सनल ड्राइंग्स रही हैं उनके लिए, और इनक्रेजिंग नोट्स उन्होंने अपने दोस्त ने लिखा है ध्रुव के लिए, जो उनके लिए कोई स्टोर गिफ्ट से ज़्यादा मायने रखता है. तो इसीलिए उन्होंने वो ग्रीटिंग कार्ड जो हैंड रिटन उनके दोस्त ने उनके लिए बनाया है, उन्होंने वो संभाल के रखा है, एंड दैट इज़ मोस्ट स्पेशल फॉर हिम एज वेल. तो आप भी अपने मैसेजेस भी हम तक पहुंचा सकते हो. एक और कॉलर से जुड़ने की कोशिश करते हैं. हेलो.
3: गुड आफ्टरनून मैडम.
1: हेलो.
3: गुड आफ्टरनून मैडम.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
3: मैं आप लोगों को बहुत मिस करी. शिकागो गई थी बेटी के पास. मदर डे पे कार्ड दिए उन्होंने, हमारे दामाद है तो भांजे सोना.
1: जी जी सर.
3: चॉकलेट दिए, चल पूल वगैरह. 15 रोज रह के आई, आप लोगों को बहुत मिस करी.
1: जी जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
3: यादगार है इस चीज, मदर डे पे कार्ड देते ना.
1: हाँ जी जी.
3: हमारी बेटी को देते, बेटी मेरे को देते.
1: ओह नाइस नाइस.
3: रस्सी उठा के.
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू.
1: तो ऐसे ही छोटी छोटी ओकेशंस भी काफ़ी कमाल के कर देती हैं ना. मदर्स डे पे भी अगर बच्चे अपने हाथों से कुछ कार्ड बना के दे देते हैं, मदर्स डे हो या कोई भी स्पेशल ओकेशन, या उनका मन किया हो, आपको ग्रीटिंग कार्ड दिया हो बना के हाथ से, तो दैट मीन्स वेरी स्पेशल टू अस, राइट?

0: आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। तो बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, ओम शांति। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा नाम पोल सेठी मेहरबाबा जुबिल से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी। सर तो बताइए सर, आपकी मेमोरेबल ग्रीटिंग कार्ड क्या
1: ठीक
0: है?
1: है मैडम, ठीक है मैडम। आज जो नरसिंहा रेड्डी जी का हैप्पी एनिवर्सरी डे था मैडम, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। मैं आप भी से थोड़ा बोलना मैडम।
0: जी उनको मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी सर। तो
1: जी, ये ट्रैफिक बारे में बोले तो मैडम, 85 में मैं एक लड़की को प्यार कर रहे मैडम। एक लड़की बोलता जी मेरा बीबी है मैडम,
0: जी
1: लेकिन
0: सर,
1: मेरे को, मैं एनटी रामा राव के फैन मैडम, मेरे को एनटी रामा राव के ग्रीटिंग्स बहुत दिए मैडम।
0: सो
1: इतना
0: ग्रीटिंग
1: ग्रीटिंग
0: कार्ड
1: ग्रीटिंग
0: आपको क्या मिला सर फिर यहाँ पे?
1: कार्ड, एनटी रामा राव का कलर फोटो ग्रीटिंग में आई तो,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: जब पहला शादी का पहला ही तो मैं ड्रामा यात्रा हूँ मैडम। ये दुर्योधन का, श्री कृष्ण का, कर्ण का मेरे को बहुत पसंद है बोल के मेरे को पापा को मम्मी को नहीं मालूम, छुपा के मेरे को बहुत ग्रीटिंग दी है मैडम। अभी भी है मैडम ये ग्रीटिंग्स,
0: राइट।
1: अभी मेरे प्रेजेंट है, मेरा बीबी है मैडम, नागविनी नाम।
0: तो वो संभाल के आपने रखे हैं
1: लेकिन
0: जो भी ग्रीटिंग
1: लेकिन
0: कार्ड उन्हें
1: हाँ,
0: आपको
1: रख दिया
0: दिया
1: मैडम।
0: है।
1: अच्छा, एक रख दिया बोलते मैडम, एक लकड़ी का डब्बे रहता, बड़े डब्बा, रंगून डब्बा बोल के क्या बोलते हैं इनको, ताला, पित्तल का ताला रहता, पित्तल का सब कुछ, पित्तल का रहता आजू बाजू पूरा, ये इसमें रख दिया मैडम।
0: नाइस, मतलब
1: अच्छा
0: सेफली आपने
1: अच्छा
0: प्रिजर्व किया है उन्हें।
1: सेफ तरीके
0: राइट
1: से रखती
0: सर।
1: है मैडम। अभी इधर से गांव जाने के बाद कभी कभी संक्रांति का टाइम में निकल के देखते मैडम,
0: राइट
1: अभी भी
0: सर।
1: लाइव।
0: जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयर करने के लिए। वेल, फिलहाल स्टूडियो क्लॉक में जो है वक्त हुआ है 1:42:53 इन द स्टूडियो क्लॉक। तो कितनी अलग अलग कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है ना, कि ग्रीटिंग कार्ड्स मिलने का ओकेशन भी अलग हो सकता है और उस ग्रीटिंग में जो लिखा हुआ थॉट्स है वो एक अलग इमोशन प्रोसेस कर सकता है। राइट। और जैसे ही मैंने आपके साथ अभी एक मैसेज पढ़ा था जिन्हें एक अपनी फ्रेंड ने ग्रीटिंग कार्ड दिया था व्हेन दे वर इन कॉलेज, तो वैसे ही बचपन में के दोस्तों के साथ भी हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। राइट। जो हमारे नेबर्स थे वहाँ पे, जब हम पले बड़े हैं बचपन में, तो वहाँ की बच्चों के साथ हमारा खेलना कूदना होता था, तो हर शाम को हम उन्हीं के साथ हमारा टाइम जो है स्पेंड करते थे। राइट। तो उनके साथ हालांकि यू नो फिर लाइफ आगे बढ़ने के लिए हम भी अपने अपने अलग अलग यू नो कारवां पे निकल चुके हैं और वो भी कहीं निकल चुके हैं, बट कभी कभार वो लेटर्स जो उन्होंने उस वक्त दिए होता है, बट बचपन में क्या ज़्यादा ही हम लिख सकते हैं, है ना। एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड हो या स्केच से या क्रेयॉन से उसे भर दे, और फिर जस्ट एक छोटा सा या सिंपल लाइन भी अगर उन्होंने लिख दिया तो वो हमारे लिए काफ़ी अहमियत या इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट मेक्स इट ट्रूली स्पेशल। और फिर अगर वही दोस्त हमें कहीं मिल जाते हैं और उनके साथ फिर ये अगर हम उन्हें भी दिखा दें तो ये कार्ड मैंने संभाल के रखा है या रखा था, तो उनके लिए भी कितना मतलब आश्चर्य की बात।

हो सकती है, मतलब मैंने इतने साल पहले बनाया था एंड इतना संभाल के उन्होंने रखा भी है बट, और फिर शायद हम उनसे पूछने का हमें मौका भी मिल जाता है कि दैट व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट दिस यू नो ग्रीटिंग कार्ड या बनाने के लिए, क्या उस वक्त क्या सोच रहा था, बट इंटरेस्टिंग शायद स्टोरीज वहाँ से भी शायद हमें सुनने को मिल सकती थी, राइट? कमिंग अप अ कमर्शियल स्पॉट और उसके बाद गाना आपके लिए हाजिर हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:50 और 25 सेकेंड हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमने ग्रीटिंग कार्ड के बारे में आपसे पूछा है, तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने इमोशंस जुड़े हुए हैं उस कार्ड्स के साथ और इंटरेस्टिंग आंसर्स भी हमने मिला है। बट एक और, इस साल जो है फिल्म लगान को रिलीज़ हुए 25 साल हुए थे, 15 जून को 2001 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो उसके 25 ईयर्स सेलिब्रेशंस भी हुए थे हाल ही में, और उसी संदर्भ में इस फिल्म को री रिलीज़ किया जा रहा है, जो रिलीज़ हो चुका है इन द थिएटर्स। तो बहुत सारे लोग उस जो टाइम पे उस टाइम पे शायद थिएटर्स में नहीं देख पाए थे, इनके लिए एक अच्छा मौका है टू एक्सपीरियंस दैट मूवी ऑन अ बिग सेलुलॉइड स्क्रीन, राइट? तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, यू कैन गो एंड वॉच आउट एंड हैव एक्सपीरियंस वंस अगेन एंड ऑल। तो आज का हमारा सफर जो है यही खत्म होता है आपका मेरे साथ। तो अगली आरजे ज्योतिर्मयी जी जो है बिल्कुल रेडी है और भी नए नए टॉपिक्स के साथ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ आपके लिए। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले शो में, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9। बट अभी आ रहा है आपके लिए फिल्म लगान से ये बेहतरीन सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने। एंजॉय दिस ट्रैक।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप मेरी रेडियो साथी चंदना से रिमझिम हैदराबाद समाप्त फरमा रही थी। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 10 सेकेंड हुआ चाहते हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

अगर इन दोनों में से एक चीज भी पाई जाए तो शेर वजूद में आ जाता है, वरना नहीं। महाकाश से शिबली की मुराद किसी चीज या किसी हालत का इस तरह बयान करना कि उसकी तस्वीर आंखों में फिर जाए। दूसरे अल्फाज में, महाकात वो शय है जिसे हम तस्वीरकशी, अक्कासी या आज की जुबान में शेरी पैकर भी कहते हैं। महाकात की तफसील बयान करते हुए शिबली कई अहम बातों की तरफ इशारा करते हैं। पहली तो ये कि लफ्जों से बनाई हुई तस्वीर पर रंगों से बनाई हुई तस्वीर से सबकत ले जाती है। मुसव्विर किसी ठहरी हुई चीज की तस्वीर खींच सकता है, लेकिन शायर उसकी तस्वीर खींचने में जो कुदरत रखता है उसमें हरकत पैदा कर देता है। शिबली ने इसकी मिसालें फारसी शायरी से पेश की हैं, लेकिन उर्दू शायरी भी एक ऐसी आर्ट गैलरी है जिसमें बेशुमार मुंह बोलती चलती फिरती तस्वीरें नज़र आती हैं। इकबाल की नज़्म बज़्म अंजुम उसकी बेहतरीन मिसाल है। जोश के यहाँ भी कई मुतहरिक मनाजिर की तस्वीरें मिलती हैं। इस सिलसिले में दूसरी अहम बात यह है कि ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती और मुसव्विर उनकी तस्वीर कशी नहीं कर सकता। मसलन, रंज, खुशी, फिक्र, बेखरारी और इन जैसी बेशुमार इंसानी जज्बात व एहसासात की, मगर लफ्ज़ों के जरिए इन तमाम महसूसात की तस्वीर कशी मुमकिन है। इसी तरह मुसव्विर किसी चीज़ का तूल व अर्ज़ तो अपनी तस्वीर में पेश कर सकता है, लेकिन उसकी गहराई या मोटाई दिखाने से खासिर है, जबकि ये शायर व अदीब की दस्तरस में है। आखिर में शिबली आम मुसव्वरी और शायरी मुसव्वरी के एक अहम फर्क को वाजे करते हैं। शायराना मुसव्वरी के फर्क को वाजे तौर पर शिबली ने बयान किया। मुसव्विर जज्ञात को नजर नहीं करता, फूल की तस्वीर खींचती है तो इस तरह खींचेगा कि एक पंखड़ी और एक एक रग वो रेशे नुमाया हो, मगर शायर उन चीजों को नुमाया करता है जो हमारे दिलों पर गहरा असर डालती है। बाकी को वो नजरअंदाज कर देता है या उन्हें धुंधला करके पेश करता है। इस तरह ये तस्वीर असल के ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। शिबली कहते हैं कि सब्जे पर शबनम देखकर वो असर नहीं पैदा हो सकता जो अनीस के उस शेर से हो सकता है। खा खा के अवस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। शिबली के नज़दीक शायरी के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ है तखय्युल। बकौल शिबली, ये महाकात से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महाकात में जो जान आती है वो तखय्युल से आती है, वरना खाली महाकात खाली से नक्काली है। तखय्युल को शिबली क़ुव्वत इख्तिरा यानी नित नए चीज़ें पैदा करने की क़ुव्वत के नाम से भी याद करते हैं। तखय्युल वो शय है जो बात से बात निकाल लेती है और वो चीज़ें जो आँख से ओझल हैं और उन्हें सामने लाकर खड़ा करती है। इसी के सहारे माजी और मुस्तकबिल दोनों हमारे पेश नज़र हो जाते हैं। शिबली कहते हैं, क़ुव्वत तखय्युल एक चीज़ को 100 दफ़ा देखती है और हर दफ़ा उसमें एक नया करिश्मा नज़र आता है। मिसाल के तौर पर एक ही फूल है जिसमें शायर कभी खुदा का जलवा दिखाता है, कभी उसके लब व आरिस की खुशबू आती है, कभी उसके चाक गरीबां की तस्वीर नज़र आती है, तो कभी ये फूल दुनिया की बेसबाती का इशारा बन जाता है। तखय्युल की तारीफ़ करने के बाद शिबली कहते हैं कि शायर क़ुव्वत तखय्युल से तमाम अशिया को नहायत बारीक बीनी से देखता है। वो हर चीज़ की एक एक खासियत, एक एक वस्फ पर नज़र डालता है, फिर दूसरी चीज़ों से उनका तकाबुल करता है, उनकी बाहमी ताल्लुकात पर नज़र डालता है, उनके मुश्तरिक औसाफ को ढूंढ कर उन सब को एक सिलसिले में मरबूत करता है, और कभी उसके बरखिलाफ जो चीज़ें यकसां और मुत्तहिद ख्याल की जाती हैं उनको ज़्यादा गहराई से देखता है और उनमें फ़र्क व इम्तियाज़ पैदा करता है। शेर व अदब के सिलसिले में शिबली का नुक्ताए नज़र रूमानी है। वो शायर पर पाबंदियाँ आयद करने के ख़िलाफ़ हैं और उसे मुकम्मल आज़ादी दिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शायर एक अदाकार होता है और अदाकार खूब जानता है कि हज़ारों आँखें उसकी अदाकारी पर लगी हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो उनसे बेखबर है। ऐसा न हो तो उसकी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी, यही ख्याल शायर का है।

0: उसे दूसरों से गर्ज नहीं होती, उसके दिल में जज्बात पैदा होते हैं और जिन्हें वो बेअख्तियार जाहिर करता है, जिस तरह की दर्द हालात में बेसाख्ता आह निकल जाती है, बिलाशुबा अच्छे शेर सुनने वालों के दिल पर असर करेंगे, लेकिन शायर इस गर्ज को पेश नज़र नहीं रखा करता। जिस तरह कोई शख्स अपने अजीज के मरने पर आपदीदा हो जाता है, तो उसकी गर्ज ये नहीं होती कि दूसरे भी लोग रोने लगे हैं। गर्ज असली शायरी वही है जिनको सामईन से कुछ गर्ज न हो। शिबली का ये नजरिया उन्हें शायरी के जदीद तसव्वुर से बहुत करीब कर देता है। किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा है, शायरी जज्बात के बेअख्तियार बह निकलने का नाम है। शिबली भी जज्बात के फौरी और बेसख्ता इजहार को शायरी कहते हैं और इसे हैवानात के फितरी इजहार से मिलता जुलता बताते हैं। कहते हैं कि जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कूकती है, ताऊस रक्स करता है, सांप लहराते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। लेकिन इंसान को जानवरों से बढ़कर एक और कुव्वत दी गई है, यानी कुव्वते गोयाई। इसलिए जब उस पर कोई खवी जज्बा तारी होता है, तो उसकी जुबान से बेसाख्ता मौजू अल्फाज निकलने लगते हैं। शिबली कहते हैं कि खुदा ने इंसान को दो कुव्वतें दी हैं, एक इदराक और दूसरी एहसास। इदराक का नाम सोचना, गौर करना और मसाइल को हल करना है, जबकि एहसास का नाम सिर्फ ये है कि जब कोई असरंगेज वाकया पेश आता है तो खुशी में सुरूर होता है और हैरतअंगेज बात पर ताज्जुब होता है। यही कुव्वत जिसे हम एहसास कहते हैं, दरअसल शायरी का दूसरा नाम है, यानी एहसास ही अल्फाज का जामा पहनाते हैं तो शेर बन जाता है। शिबली की अदबी खसूसियात, खासी तनोअ, शिबली की शख्सियत के कई पहलू हैं। वो मौरिख भी हैं और तनकीद निगार भी हैं, लेकिन उनकी शायरी का बुनियादी मिजाज शायराना है। ये मिजाज उनकी नसर में पूरी तरह जलवागिर है। शिबली की नसर में बला की कशिश और दिल आवेजी है। तसनीफ व तालीफ से शिबली के मिजाज को बहुत मुनासिबत हुई है। उनका सारा वक्त या तो मुताला करने में गुजरता है या तसनीफ व तालीफ में। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, मगर उनकी तनकीदी अफकार को समझने के लिए सबसे अहम तसनीफ शेरुल अजम है, और ख़ास तौर पर इसका चौथा हिस्सा जिसमें तनकीदी तसव्वुरात और नज़रियात पेश किए गए हैं। शेरुल अजम दरअसल फ़ारसी शोरा का तज़किरा और इंतखाब कलाम का इंतखाब है। शिबली के तनकीदी तसव्वुरात को समझने के लिए उनकी दूसरी किताबें भी बहुत अहमियत की हामिल है। मेरे ख्याल शिबली नुमानी उर्दू अदब के एक अहम नक्काद वो शायर हैं।
1: मत सहल हमें जानों के तहत अभी आप शिबली नुमानी पर तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और पेशकश रूहिना फातिमा की थी। सामाइन, हम हर रोज फिल्मी नगमे गीत सुनते हैं। फिल्मी गीत हमारी सकाफत और हमारी माशरत का एक अहम अटूट हिस्सा है। ये ना सिर्फ तफरी का जरिया होते हैं, बल्कि इंसानी जज्बात, एहसास और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी भी करते हैं। फिल्मी गीतों के ज़रिए मोहब्बत, खुशी, गम, जुदाई और उम्मीद जैसे जज्बात को खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है। तो आइए सामाइन, गीत सुरीले गाते जा के तहत आज हम इन्हीं की नुमाइंदगी करने वाले फिल्मी गीत सुनते हैं जो समाज और माशरे की अक्कासी करते हैं, जिसमें शेर व बम भी है और खिर्द और कल्ब के छलकते पैमाने भी। आगाज पर लिया है हमने फिल्म आंधी।

अभी आप दो गाना समाप्त फरमा रहे थे, फिल्म आंधी थी। फिल्मी गीतों की सबसे बड़ी खूबी है कि ये आसान अल्फाज में दिलकश धुन के साथ हर उम्र के लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक गीत नगमे सुनता है और लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये गीत हमें ना सिर्फ खुशी देते हैं बल्कि बाज़ औक़ात मुश्किल वक्त में हौसला भी फराहम करते हैं, जो बड़े काम की चीज़ है। फिल्मी गीतों में शायरी और मौसीकी का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है।

शायर अपने अल्फाज के ज़रिए दिल की बात इस तरह बयान करता है। मौसीकार इन अल्फाज को धुनों में ढाल कर इन्हें मज़ीद दिलकश बना देता है। गुलोकार अपनी आवाज़ के ज़रिए इन गीतों में जान डाल देता है, जिससे सुनने वालों पर गहरा असर होता है और उनकी दिल की बात होठों पर नगमों के ज़रिए चली आती है। आइए अब सुनते हैं फिल्म रज़िया सुल्तान से लिया गया ये नगमा।

फिल्मी गीतों में शायरी और मौसीकी का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। शायर अपने अल्फाज के ज़रिए दिल की बात बयान करता है और मौसीकार इन अल्फाज को धुनों में ढाल कर इन्हें मज़ीद दिलकश, दिलरुबा, दिलहोश बना देता है। गुलोकार अपनी आवाज़ के जादू से ऐसा जादू जगाता है कि जिनमें एक नई जिंदगी की रूह फूकी जाती है। आज के दौर में फिल्मी गीत सोशल मीडिया, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के लोग एक दूसरे के गीतों से लुत्फ़अंदोज़ होकर मानूस हो रहे हैं। ताहम कुछ फिल्मी गीतों में ऐसी तासीर होती है कि जिससे हुब्बुल वतनी, यकजहती का जज्बा पैदा होता है।

अभी आपने उमराव जान से लिया गया गीत सुना, जिसमें माजी की तड़प और माजी की लगन और माजी की उपज को भरपूर अंदाज से पेश किया गया था। सामईन, फिल्मी गीत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ये तो हम बात कर चुके हैं। अगर इनमें अच्छे पैगाम, मियारी शायरी शामिल हो तो ये ना सिर्फ तफरी फराहम करते हैं बल्कि माशरे की इस्लाह में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो तरक्की याफ्ता माशरे की पहचान होती है। आइए अब सुनते हैं गुमराह फिल्म से लिया गया ये गीत।

संगीत इंसानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ना सिर्फ दिल को सुकून देता है, बल्कि इंसान के जज्बात एहसास को भी जाहिर करता है। कदीम ज़माने से ही संगीत को खुशी, गम, मोहब्बत, इबादत के इजहार का जरिया समझा जाता है। संगीत में सुर, ताल, लय, गत, धुन का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है, जो सुनने वाले के दिलों पर गहरा असर डालता है। संगीत की दुनिया में बहुत से अजीम फनकार गुजरे हैं, जिन्होंने अपने फिक्र फन से लोगों के दिल जीते हैं। इन्हीं में से कई एक नुमाया नाम है, जैसे मोहम्मद रफ़ी।

सफ़र फिल्म सलिया गीत में आप हुस्न और हसीना की बैकर तराशी अशार के जरिए बयान की जा रही थी। सामाइन आइए आप सुनते हैं गुलामी फिल्म से लिया गया ये नगमा, जिसने अपने अहद में एक अनमोल तारीख रकम की है।

फिल्मी नगमे मोहब्बत, भाईचारे, वतन दोस्ती, मेहनत और मोहब्बत, इंसानियत जैसे मुस्बित पैगाम आम करने में मदद देते हैं। बाज नगमे माशरती मसाइल जैसे गुर्बत, जहालत और नाइंसाफी की निशानदेही करते हैं, लोगों में शऊर बेदार करते हैं।

अभी आपने दुगाना सुना, फिल्म थी बाजार। आइए अब सुनते हैं गमन फिल्म से लिया गया ये सोज भरा गीत।

सामाइन अभी आप चा चा चा फिल्म से लिया गया नगमा सुनी। बहरहाल फिल्मी गीत हमारे समाज, हमारी तहजीब, हमारी ज़िंदगी का एक आईना है जो तर्जुमानी और नुमाइंदगी की बेहतरीन तस्वीर कशी करता है, और ये आईना हर दौर में हमें अपनी हकीकत बताता रहेगा। सामाइन, प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं सिलसिला फिल्म से लिया गया ये गीत।

सामिन, अभी आप गीत सुरीले गाते जा के तहत पुराने नाकाबिले फरामोश नगमे समात फरमाए। सामिन आइए अब सुनते हैं कल बज़्म रंग में नशर किया जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल शब 9:30 पर बज़्म रंग का आगाज़ होगा हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश आयशा बुतुल की है और कल के बज़्म में मुशायरे की महफिल सजेगी जिसमें हिस्सा लिया है आगा सरोश समीउल्लाह हुसैनी समी जामिर अली हसरत ने। गीत सुरीले गाते जा के तहत पुराने नाकाबिले फरामोश नगमे सुनाए जाएंगे और पयाम शब पर हमारी बज़्म का अख्तिताम होगा। पयाम शब की तहरीर व पेशकश जनाब सैदी की है। यह था कल पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामाइन आइए अब सुनते हैं पयाम शब, तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है।

सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। ये शेर हमें इंसानियत, हसासियत और दूसरों के एहसासात को समझने का दर्स देता है। हर ज़रूरतमंद अपनी मजबूरी जबान से बयान नहीं कर पाता। बहुत से लोग अपनी इज्जत नफ्स की वजह से हाथ नहीं फैलाते, मगर उनकी आँखें उनके हालात की कहानी सुना रही होती हैं। इसीलिए सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पर ना जाएं, बल्कि लोगों के चेहरों, रवैयों और खामोशियों को भी समझने की कोशिश करें। जो शख्स दूसरों की गैर कही ज़रूरत को पहचान लेता है, वही हकीकी मानों में

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी खबरें दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खोला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईएमयू में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
3: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच

में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमियाओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल से जुड़ी घोषणा का समर्थन किया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मैं अपनी सांसों से भी ज्यादा तुमको प्यार करती हूँ।

नींद आती है तो ख्वाबों का कारवा भी आता है, जाने क्यों हर रात सपनों में तेरा नाम आता है। ढूंढती हैं मेरी आंखें उस चेहरे को हर पल, जो सुबह होते ही सिर्फ यादों में रह जाता है।

जिंदगी भर का है तेरा मेरा साथ, अब कभी छूटे ना ये अपने हाथ। लाख रूठे जमाना, लाख बदले जहां, हर कसम से तेरा दामन नहीं छूटेगा अब।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, जरा सी देर ही सही तुम पास तो आ जाओ।

तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, जैसे अंधेरी रात में कोई सितारा आसपास से उतर आया हो।

काली जुल्फों के साये में छुपा है वो समंदर, काली जुल्फों के साये में छुपा है वो समंदर कि डूब जाते हैं लोग देखकर तेरी ये नशीली आंखें।

0: मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो, मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो। हर बात जुबां से कहना हर बार मुमकिन नहीं होता।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को, क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को कि सामने महबूब है और दीदार की इजाजत नहीं।
1: ये जो चिलमन है

दोस्तों, ये समय हुआ है समाचारों का। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने

0: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज द आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. The two leaders reviewed the progress made under the India-US Compact initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister reiterated his appreciation for President Trump's efforts in ensuring the restoration of peace and stability in West Asia. Mr. Modi also reiterated the importance of ensuring the safety and security of civilians, including seafarers. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measures of AI lies

मैं हूं जो एक बार फिर से आपके साथ, और कार्यक्रम है गीत सुहाने, और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, तेरी मेरी कहानी तो सांसों की रवानी है।

एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, हर शाम तेरी बाहों में हो और तेरे ही नाम से सवेरा हो।

वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। अब चले भी आओ कि सांसें आवाज देती हैं तुम्हें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह घेरा है, आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह से घेरा है, तुम चलो मेरे संग वहां जहां सिर्फ तेरा और मेरा बसेरा है।

मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, तुम्हें मिले हर वो खुशी, यही इस दिल का पैगाम है।

शमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। शमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। झूम उठो कि आज ये रात खुशी की रात लाई है।

राज्य में समाचार और दो बजकर 10 मिनट पर फिर से आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

0: महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। एफआईएच प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस ने 6 मिनट में गोल किया, जबकि डीआर कांगो ने योआने विस्सा ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में बराबरी का गोल दागा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with the US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also reviewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, "Artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life." However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth,

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकेंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और चलेंगे इस सफ़र में बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। रहिए इस घंटे मेरे साथ और पहला गीत बहुत ही खूबसूरत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में।

तू हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है। तू हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है। सोचता हूँ तुझे रोक लूँ पर तू हाथ कहाँ आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए।

इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ना कुछ उन्होंने कहा ना कुछ हमने कहा, ना कुछ उन्होंने कहा ना कुछ हमने कहा, राहों में हुई हमारी मुलाकात कि हमारी आंखें सब कुछ कह गई।

बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ, बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ, तो सब भूलकर मैं इन ठंडी बूंदों से बातें करती हूँ।

समय है समाचारों का, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही आपसे मिलूंगी किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अगला कार्यक्रम आपके साथ बढ़ाएंगी वंदना, कार्यक्रम हमराही 3:10 पर। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत

0: एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शीलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with the world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also reviewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events, including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains, and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions, and addressing widening global economic imbalances. The leaders also adopted a declaration focused on creating a safer digital space

हमराही कार्यक्रम में सब साथियों का स्वागत करते हुए गीतों के साथ और गीतों की हम सफर में आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

साथी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकला गीत था और सुरों से सजाया नौशाद ने। अगला गीत परदेसी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और चित्रगुप्त का संगीत।

तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, जैसे दिन को कोई नया एहसास लगता है।

0: महबूब की मेहंदी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हमारे दोस्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

शागिर्द फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बादल ने फिर से आसमान में ली है अंगड़ाई, ठंडी हवाओं के संग फुहारों की बारात है आई। मौसम की खुशखबरी ने दिल में जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहराई।

दोस्तों, प्रकृति के संरक्षण में अगर आप खड़े हो और तेज हवाएं चल रही हो तो उस छटा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मेरा गांव मेरा देश फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खुश नसीब होते हैं जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी टावर हाउस। गीत की रचना की थी असद भोपाली ने और संगीत रवि का था। दोस्तों पहले के गीत भी कितने गजब के हुआ करते थे, कोई बात भी पूछनी होती थी तो गीत का अंदाज ही अलग होता था और गीत में कहते थे।
1: इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत

बात एक रात की, इस फिल्म से भी आपने गीत सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीत की रचयिता थी मजरू सुल्तानपुरी और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने।

101 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से हम राही कार्यक्रम, और हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक। दोस्तों, दोस्ती में कोई भी आपका दोस्त ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसे धोखा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो विश्वास करने वाला होता है उसे कोई भी बात अपने दोस्त से गवारा नहीं होती। इसलिए जैसे आप बाहर से देखते हैं, दिल से भी और दिल में भी वैसे ही बने रहना चाहिए।

दोस्तों, दोस्ती ही एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है ना, जिसे हम खुद चुनते हैं और केवल साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुख दुख साझा करने के लिए, बिना कहे जज्बात समझने के लिए और एक दूसरे की खुशी में खुश होने का खूबसूरत एहसास भी होता है दोस्ती। तो ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बता देती हूँ, बिन फिरे हम तेरे इस फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना का गाया हुआ। असद भोपाली ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ अभिमान फिल्म से, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और सचिन देव बर्मन की बनाई हुई धुन है। दोस्तों, इन गीतों के लिए कहना पड़ेगा कि ओल्ड इज गोल्ड। जब ऐसे गीत बजते हैं ना, तो आज भी उस दौर की हमें याद तरोताजा हो जाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टैंक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। श्री वैष्णव ने पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की भी घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with the world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also viewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events, including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design, and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable, and resilient growth, securing critical mineral supply chains, and creating a safer digital space for miners

अरुणिमा कार्यक्रम में दोस्तों के साथ गीतों का आनंद लेते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चुग सुप्रभात।

लाजवंती फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मजरू सुल्तानपुर की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, अगले गीत को सुनकर आपको एहसास होगा कि आप किसी के लिए कितने अनमोल हैं।

दोस्तों, जिंदगी में खट्टी मीठी यादें तो सब रिश्तों में चलती रहती हैं, लेकिन अगर रिश्ता बरकरार रहता है तो फिर सही है। मेरे सनम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत था मजरू सुल्तानपुरी का, और संगीत ओपी नैयर का। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशियां आए अच्छा लगता है, तब लगता है कि किसी की दी हुई दुआओं का असर ही है। इसलिए हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और उन्हें दिल से दुआएं दें।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि अगर आपको जीत किसी भी फील्ड में मिल जाए या आपको चाहिए, तो पहले खिलाड़ी बनना पड़ेगा, फिर मुकद्दर आजमा कर देख लेना।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था दूर की आवाज़ फिल्म से। शकील बदायूनी के बोल थे और रवि का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए।

इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गीत आपने सुना छोटी सी मुलाकात फिल्म से। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीला आकाश फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजा मेहती अली खान की रचना है और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

दोस्तों, आपके कुछ रिश्ते या कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं और उनके ना होने पर आपको उनकी कमी खलती है और होने पर पूरी दुनिया का एहसास होता है ना आपके साथ भी ऐसा?

इज्जत फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नीलकमल इस फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और रवि का संगीत।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम के अंतर्गत गीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुग के साथ। अगला गीत मल्हार फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। हिंदी वर ने गीत को लिखा है और रोशन का संकेत।

दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अरुणिमा कार्यक्रम में आपने जितने गाने सुने आपको सभी गाने पसंद आए होंगे और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ मुनीम जी फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। लेकिन चलते चलते कहना पड़ेगा कि बिछोड़ने के बाद साथ बिताया गया हर पल आपको तब याद आता है जब आप तन्हाई में होते हैं, फिर हंसी मजाक की बातें, छोटी छोटी बातें और अनकहे वादे यादों में कैद होकर रह जाते हैं। और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत मुनीम जी फिल्म से साहिल लुधियानवी का गीत है और एसटी बर्मन का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि पहले दिन राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। वे कल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। बाद में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 4

0: 105 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel. Enthusiastic supporters greeted the Prime Minister with cheers and expressions of support as he began his engagements in Paris. In Paris, PM Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains, and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions, and addressing widening global economic imbalances. The leaders also adopted a declaration focused on creating a safer digital space for miners. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. The President's Secretariat said that on the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. Hardcore woman Maoist Pushpa Mehto, carrying a bounty of 10 lakh rupees, surrendered before the Kolkata police in West Bengal after laying down her arms following 21 years of insurgency. Facing mounting pressure from joint security forces in Jharkhand's

भोर सुहाने इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों को मेरा यानी वंदना जुग का प्यार भरा नमस्कार।

ईश्वर से की गई सच्चे मन से प्रार्थना हो जाती है स्वीकार और एक और हमें साथ ही साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल जाती है। दोस्तों, ये जीवन बस यूं ही चलता रहेगा, हम आपस में भी एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें।

सच में कहते हैं ना, इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है। चित चोर फिल्म से ये रचना आपने सुनी, हेमलता और येसुदास की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। आया सावन झूम के, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बहुत बार इंसान के मन में बहुत सी उलझनें पैदा हो जाती हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, क्योंकि उसके अपने ही उसे समझ नहीं पाते।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।